केवेनष्टेयात न एङता सोवाने आ याय आ याय अह ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया शेक

का को हवा के पचे चेता आम चेवे पिछोते पमयं यकय हे क्यों नम्या तालावा ये हे ये या हे या हे या हे या को ने नम नवत क्या ओवे ओवा के कौन मुके कुछ चाओ।